0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा

उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड काम इथनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फंडे रेनबो फंडे
2: रेनबो फंडे रेनबो फंडे
1: म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे विथ

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक निस्काय व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फन डे रेनबो फन डे
2: रेनबो फन डे रेनबो फन डे
1: म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे

0: यानंतर ठीक 8 वाजता दिल्ली केंद्राहून प्रसारित होणारं हिंदी बातमीपत्र, 8:15 इंग्रजी बातमीपत्र, 8:30 मराठी बातमीपत्र आणि 8:40 ऐकायला विसरू नका मस्त मुंबई FM रेनबो आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर.
1: नमस्कार श्रोते हो, मी अभिजित खांडकेकर. विश्वसनीय बातम्या, सुरेल गाणी, मनोरंजन आणि माहितीची सप्तरंगी कमान, आकाशवाणी मुंबईची रेनबो वाहिनी छान ऐकत रहा. 107.1 MHz वर आकाशवाणी मुंबईची FM रेनबो वाहिनी.
2: नमस्कार, मी उमेश कामत. दिवसाची सुरेल मराठी गाण्यांनी सुरुवात करणारी आकाशवाणी मुंबईची FM रेनबो वाहिनी 107.1 MHz वर ऐकत रहा, आनंद घेत रहा.
3: क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर.
5: हर घर सूर्य घर.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने. विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की आज नई दिल्ली में बैठक. केंद्र ने 1.25 लाख रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की. विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू. ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए. और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे. पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था. 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है. एक रिपोर्ट.
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है. भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है. ऐसे समय में

0: अब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
6: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा।

0: 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
3: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw a rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज आपका मनमीत आरजे अमित फ्रॉम 107.1 एफएम रेनबो। अक्सर आपको कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो चलिए, आज जो अवसर ढूंढा है उसे हम सेलिब्रेट करेंगे 10 जून इस तारीख से जुड़े हुए मुंबई के मतवाले राही सेगमेंट में। प्रोग्राम का नाम है मस्त मुंबई। आपने ट्यून इन किया है 107.1 एफएम रेनबो। कहते हैं कि ये शहर कभी सोता नहीं है और यहाँ के लोग कभी भी रुकते नहीं हैं। स्वागत है आप सबका जहाँ रफ्तार ही जिंदगी है और मस्ती ही बंदगी है। स्वागत है मस्त मुंबई के सेगमेंट मुंबई के मतवाले राही में। फिलहाल जो सुबह हुई है उसी सुबह का ये वर्णन अगर ये सुदास की आवाज में हो, इंदिवर के बोलों के संग हो, बप्पी लहरी के संगीत के संग हो, तो हम सभी का दिन बन जाएगा।

0: स्मॉल डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

बड़ी खुशी है कि आज हमारे संग बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भैया इंतजार किस बात का, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, विच इज 8657661071। इस नंबर के साथ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपका नाम और आप कहां से हैं, है ना। वैसे देखने जाए तो बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं, जिसमें फिरोज जी हैं, रजनीकांत पाटिल, प्रणव शिंदे, आर्यन सोमवंशी, महेश भाटकर, पंकज मोहड, विजेंद्र घटोल, कमलाकर शेलके और रेवती, रविंद्र सरनाइक बैंड्रा से, सीमा पटवर्धन हैं, डॉक्टर अभिजीत रेडीज हैं, मालिनी बागवे जी हैं, सभी का तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं। कहते हैं सपनों की इस नगरी में हर गली एक नई कहानी है, यहां हर एक राही चलता फिरता मतवाला राही है। 10 जून दिन बड़ा खास है, मगर मुंबई के लोकल में सफर करते हुए कई सारे लोगों को आज का दिन विशेष जानने की जो चाहत रहती है, उसके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी बात कि इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा नेहरू जी का दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता पीएम मोदी जी बन रहे हैं भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री। तो 10 जून ये दिन बहुत ही खास है हम सभी भारतीयों के लिए। बस कुछ ही पलों में एक डायरेक्टर के बाद आप सभी को बतलाने जा रहा हूं जो आज के दिन पैदा हुए थे। उससे पहले हम जाते हैं इस माहौल को जरा और सुहाना बनाने के लिए किशोर कुमार की आवाज का सहारा क्यों न ले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में गाया ये अंदाज़।

एक ऐसे इंसान जो मराठी परिवार में तो पले बढ़े, मराठी परिवार में ही उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के माथेरान में उन्होंने जन्म लेने के बाद सोचा नहीं होगा कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, बट बचपन में चाहत थी कविता करे। कविता करने की वो चाहत कहीं ना कहीं उन्हें कला की ओर खींच ले जाती थी। मगर जब लंदन में डिग्री के बाद चले गए कुछ और सीखने, तब उनके मन में चाहत पैदा हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए यार, किसी गोरी मैम से प्यार करके शादी हो जाए तो बात बने। मगर हुआ कुछ अलग ही। वे वहां जाने के बाद ड्रामा प्लेस के प्यार में गिर गए और उन्होंने लिखना अभिनय करना शुरू कर दिया। जैसे ही भारत आए उनके कई सारे ड्रामास लोगों को देखने मिले और वहां आने के बाद उन्होंने साउथ में और हिंदी में और कुछ मराठी में भी काम करना शुरू कर दिया एज एन एक्टर। एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। 19 मई को उनका जन्म भले ही हुआ हो, मगर आज के दिन 10 जून 2019 को वो हमें छोड़कर चले गए। मैं बताया किसके बारे में बोल रहा हूँ, गिरीश कर्नाड, एक बहुत ही जाने माने अभिनेता, निर्देशक और कन्नड़ लेखक। आपको बताया उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, चाहे कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इन जैसी कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया है। और हमें खुशी इस बात की है कि उनके लिखे हुए कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाए जाते हैं। हम चाहते हैं गिरीश कर्नाड को एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए

उन्हीं की फिल्म उत्सव आई थी अगर आपको याद होगी, उसमें लता जी और आशा जी ने मिलकर ये ड्यूएट गाया था। इस गाने के साथ हम गिरीश कर्नाड जी को याद करेंगे और कुछ ही पलों में आपको बताएंगे कि कैसे आज का दिन सेलिब्रेट किया जा सकता है। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

कुछ पल ऐसे होते हैं जिंदगी में जो हर किसी के साथ बांटने का मन करता है, और ये पल बांटते हुए अगर कुछ बातें कुछ चीजें हम हमारे गुजरने के बाद बांटना चाहें तो आपको पता चले कि एक ऑप्शन जरूर है, हम हमारे गुजरने के बाद भी ये दुनिया देख सकते हैं। कैसे बताओ, कैसे जल्दी जल्दी बता। कविता जी ने ये बात हम सभी के सामने रखी हुई है और हम चाहते हैं उसी बात को इस गाने के साथ बयां करें। एक थोड़ी सी हिंट मैंने तो दे दिया आपको, है ना, हमारे गुजरने के बाद भी हम ये दुनिया कैसे देख सकते हैं हमें बताइए। 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर।

ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। क्या जबरदस्त सोच रखी है ना साहिर साहब ने। साहिर लुधियानवी की लिखावट से सजा सुरेश जी और लता जी ने गाया ये गाना फिल्म धनवान से। कविता जी हमारे पास इस गाने की चाहत रखती हैं, मगर एफएम रेनबो पर आपका मन विदार जमी जब आ जाता है तब कई सारे ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ता है जो मुंबई के मतवाले राहियों को ट्रेन में सफर करते करते मानो दिन विशेष की याद तो दिलाता ही है मगर बतलाता भी है। भाई मरने के बाद भी हम दुनिया देख सकते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे श्रोता मनीष वकीलाना जी कांदिवली से हमें मैसेज करते हैं और बतलाते हैं इसके लिए एक ही जरिया है आई डोनेशन। जी हाँ, आप सभी इस बात पर गौर करें ये श्रीलंका में कंपलसरी है, बॉडी हो स्किन हो अलग अलग तरह के डोनेशंस है आफ्टर डेथ। तो आई डोनेशन यानी आज विश्व नेत्रदान दिवस है ना, तो इसी बहाने मैं चाहता हूँ कि हम सभी थोड़ा सा समय निकालें और ये फॉर्म भर दें। नेत्रदान पर दिल छू लेने वाली बात प्रकाश शिंदे जी लिखते हैं कि जिंदगी के बाद का सफर हम रहे न रहे कल हमारी आंखें जहां देखेगी किसी के सुने जीवन में या खुशियों का समा देखेगी खुद तो विदा हो जाएंगे हम इस दुनिया से एक दिन पर हमारी रोशनी किसी और के चेहरे से मुस्कान देखेगी। फिरोजी गानपुरिया मनीष जी पंकज मोहट जी प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे प्रदीप अनंत कृष्णन श्रेय राउत प्रमोद चिंचोलकर इन सभी ने सही जवाब दिया है। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग मस्त मुंबई।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: 9:31 हो चुका है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम, आपका मन मिदार जमित के संग। मुंबई के मतवाले राही सेगमेंट में हमारे कई सारे राही हमारे संग जुड़ चुके हैं और हमें खुशी इस बात की होती है यार, क्या जबरदस्त ये माहौल बन जाता है। देखो धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती है, बातों के साथ साथ कुछ इस कदर लोग जुड़ने लगते हैं कि हमें बताते हैं कि हम कहां से हैं। जैसे कि मिस्टर वेंकट रमन खारगर से हमें मैसेज करते हैं और आई डोनेशन का जिक्र करते हैं, उनसे फॉर है वो। और अंजलि पाटिल जी कोपर खैरन से हमें मैसेज करती हैं, शी इज आल्सो सेइंग गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। वैसे देखने जाए तो एक घंटा बीत नहीं आया है ना मिलके। दादर से बाबा जुड़ चुके हैं हमारे संग, आपका भी तहदिल से स्वागत है। रजनीकांत पाटिल जी हो या फिर पंकज मोहट जी, प्रमोद चंचोलकर जी, और एक और बंदा हमारे साथ जुड़ चुका है जिनका नाम मनीष जी है, वेंकट रमन जी हैं ही, और प्रकाश शिंदे जी हैं, विजेंद्र घटोल, सोनई से सखाराम राशिनकर जी हैं जो कि शनि शिंगणापुर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है, वहाँ हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में इतनी विविधता है, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद मुंबई में आने बाद जितने सारे लोग लोकल से सफ़र करते हैं उन्हें पता होगा यार लोकल में क्या क्या बातें नहीं चलती है ना। स्पेशली अगर कोई पहले दिन कोई अगर क्रिकेट से जुड़ी हुई बात हो या मैच हो तो तुरंत दूसरे दिन सुबह के वक्त में क्रिकेटर्स के बारे में या क्रिकेट की उस गुफ्तगु के बारे में हम सभी को सुनने मिलता है। हम चाहेंगे आज के दिन में क्रिकेट का ऐसा क्या खास महत्व है, बताएंगे इस गाने के बाद। बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत आर जैमित के संग मस्त मुंबई कार्यक्रम में। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ के संग ये गाना सुनिए और FM रेनबो में मस्त मुंबई एंजॉय कीजिए।

वैसे देखा जाए तो हमारे सारे श्रोता इतने जानकार हैं, हर कोई अपना अपना जवाब देने के लिए तैयार है। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, अगर आप भी देना चाहते हैं तो ये मौका मत गवाइएगा।

9:40 हो चुके दोस्तों, और जो बात हम कर रहे हैं ना मस्त मुंबई में, वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। पंकज जी, प्रणव जी और हमारे कुछ अन्य श्रोताओं ने, उद्धव कुरी जी ने भी हमारे संग जुड़कर अपनी बात रखी है। कुछ लोग अभी भी दृष्टिदान पर बात कर रहे हैं, मगर सही जवाब जो है वो प्रणव जी ने दिया है, पंकज जी ने दिया है कि हाँ, 10 जून 1986 में भारत ने इंग्लैंड टीम को टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया था। अब देखिए, ये बात आपको लगी कि उसमें क्या बड़ी बात है, मगर बताऊं, ये दिन वो है जब भारतीय टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। कपिल देव उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने 5 विकेट से हरा दिया था उन्हें। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, पता है ना, और वहां जीत दर्ज करना अपने आप में क्रिकेट के हज के बराबर है। तो हम चाहते हैं वही बात आज हम जरूर याद करें, और साथ ही साथ हमारे सारे खिलाड़ियों को भी अभिनंदन करें जिन्होंने ये मैच जितवाई थी। सुनते रहना FM रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम, मुंबई के मतवाले राय में मैं हूं आपका मनमीत और जमीत आप सभी के साथ।

अरे अरे अरे अरे अरे हरे हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना चल।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ की डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे सारे श्रोता है ना, अपनी बात जब रखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए, हमारे एक श्रोता है, अपना नाम बताते हैं, उद्धव कोरे विरली बुज जिला भंडारा से हमें मैसेज करते हैं और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आई हुई जो न्यूज़ है उसका फोटो मुझसे साझा किया है और उसमें लिखा है कि नेत्रदान करते वक्त कभी कभी कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हो जाते हैं, जैसे कि उन्हीं के गांव में अर्चना चुटे ये 22 साल की लड़की गुजर गई, मगर नेत्रदान करने वाला जो उनका संच था, टीम थी उनकी, वो वहाँ आने में थोड़ी सी देरी हो गई, मगर गांव वाले रुक नहीं रहे थे और उन्हें मृत्यु के शैया पर रखा गया, शमशान में ले जाया गया। मगर वहाँ जाने के बाद उनके परिवार ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अगर वो लेट आ रहे हैं तो हम कुछ पल रुकेंगे और नेत्रदान ज़रूर करेंगे। और आखिरकार अर्चना चुटे नामक उनके आँखों का, उस लड़की के आँखों का नेत्रदान हो चुका। इतना ही नहीं, ऐसा एक और बार हुआ। एक 12 साल की लड़की थी मनीषा भिंडारकर, ये एक्सीडेंट की वजह से ये दुनिया छोड़ चली गई, मगर उनके माता पिता ने उनकी आंखें डोनेट करी और उन्हें जिंदा रखने का प्रयास किया। अब देखिए, अगर ऐसे लोग होंगे तो हमें पता चलेगा कि यार, नेत्रदान सिर्फ फॉरवर्ड करने वाले मैसेजेस नहीं है, ये असल जिंदगी में अप्लाई करने वाली चीज है। महज सेकंड स्टैंडर्ड में सीखने वाली खुशबू नामक लड़की जब हार्ट अटैक से गुजर जाती है, 6 साल की लड़की है।

118 लोगों ने अब तक नेत्रदान किया है और ग्रामायण प्रतिष्ठान ये उनकी संस्था का नाम है। तो हम चाहते हैं कि ग्रामायण प्रतिष्ठान के लिए हम ज़रूर शुभकामनाएं दें और साथ ही साथ आप ये जो काम कर रहे हैं वो आप यूं ही करते रहे, औरों को प्रेरित करते रहे। FM टेम्पो पर मैं आपका मनमीत आर्जमित अब आखिरी मोड़ पर कुछ गाने आपको सुनाऊँगा। ठीक 10 बजे हम हिंदी में समाचार सुनेंगे और समाचार के उस पार हम नमस्ते भारत में जीते हैं शान से ये सेगमेंट सुनेंगे आरजे अमित के संग। FM रेनबो पर बने रहना और सुनते रहना आपके पसंदीदा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। समाचार में आगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। समाचार में आगे, महाराष्ट्र सरकार ने 22,611 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिनमें घोड़बंदर रोड और भाईंदर को जोड़ने वाली सुरंग तथा एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा नवी मुंबई मेट्रो का विस्तार भी शामिल है। इस विस्तार के तहत लाइन 2 के जरिए नवी मुंबई मेट्रो को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। और समाचार के अंत में, ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीत आर जमीत और आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में बुधवार को जीते हैं शान से। इस सेगमेंट में हम कई सारे कलाकारों के बारे में या कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में जान लेते हैं जो सच में अपने जीवन में बड़े शान से जीते हैं। एक ऐसी हस्ती आज अपना जन्मदिन मना रही हैं और उनके बारे में आज कुछ जानकारी, कुछ गाने, कुछ बातें, ये सब कुछ हम साझा करने वाले हैं। पता है वो कौन है? एक रॉकस्टार है जिनके गानों पर पूरा देश झूमता है, जो अपनी जिंदगी सिर्फ किंग साइज में नहीं बल्कि जीते हैं शान से। हाँ, हम बात कर रहे हैं हिट मशीन मीका सिंह की।

समय का पहिया आगे बढ़ते रहता है और हम समय के हिसाब से गानों में भी तब्दीली कर देते हैं। आज हमारे संग जुड़ने वाले जितने सारे श्रोता हैं उनमें से मनीष जी, प्रमोद चिंचोलकर, रजनीकांत पाटिल, अंजलि पाटिल, फिरोज सिगानपुरिया, बाबा दादर से हैं, शिवलक्ष्मी मस्तकार, तेजाब के गाने की मांग करने वाले हमारे पूर्ण चंद्र तेजस्वी जी जो कि हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। न्यूज ऑन AIR ऐप का देखो क्या जबरदस्त फायदा होता है। भंडारा से हमारे उद्धव कोरी जी हमारे संग जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बात साझा करी थी इससे पहले। और अजय साखरे जी इंदौर से हमें मैसेज करते हैं, पंकज मोहोड़ जी हैं और अमरावती से ये हमारे संग जुड़े हुए हैं, दिलीप पाटिल जी आज हमारे साथी बनकर हमारा साथ निभा रहे हैं, एंड इवन प्रदीप अनंत कृष्णन, विजेंद्र घटोल,

0: इन्हें से कुछ श्रोता प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे और वेंकट रमन जी हैं, सखाराम राशिनकर, श्रेय राव, श्रीधर मोरजकर, शुभदास जी, विक्रम आठवले, आर्यन सोमंशी, महेश भाटकर, कमलाकर शेल के वर्ली से हैं और रेवती रविंद्र सरनाइक बैंड्रा से हमें मैसेज करती हैं, पूजा जी जुड़ी हुई हैं, कविता जी भी हैं और इतने सारे श्रोताओं के संग अगर आप भी अपना नाम FM रेनबो पर सुनना चाहते हैं तो हमें बतलाएं आपका नाम, आप हमें अगर सुन रहे हैं तो कहाँ से सुन रहे हैं बताइए 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर परमानेंटली आपके मोबाइल में सेव कर दीजिए। वेलकम बैक इंडिया, सुबह की चाय के साथ आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं हूं आपका मनमीत आरजेमी जो सुना रहा हूं आपको मीका सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सदाबहार गाने और गानों के साथ साथ कुछ बातें भी हम साझा करेंगे। अगर आप कहेंगे अरे
1: आज प्यार की हो
0: आप कहाँ चले गए तो बतलाना चाहेंगे अरे हम आपके अगल बगल ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, बने रहना FM रेनबो पर।
1: दोनों डील कर सील
2: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: 10:15 हो चुके हैं दोस्तों, और आज लगभग 16 मिनट की ओर हमने ये सफ़र शुरू कर दिया है। बट मैं कहना चाहूँगा कि मीका सिंह की आवाज़ में आपने कई सारे बॉलीवुड के गाने सुने तो ज़रूर हैं, मगर आप कहोगे यार ये बंदा जीता कैसे शान से? हाँ, आलीशान गाड़ियाँ है, प्राइवेट जेट हैं, और हाथों में वो कीमती डायमंड का ब्रेसलेट। मीका जी ने तो साबित ही कर दिया पाजी, अगर मेहनत राजाओं जैसी हो तो ज़िंदगी भी महाराजाओं जैसी ज़रूर मिलती है, है ना? कुछ ही देर में हम बात करेंगे कि वो शान से कैसे जीते हैं और किस तरह हमें बतलाते हैं कि हमें भी कुछ करना जरूर चाहिए समाज के लिए, है ना? उससे पहले सच सच के टशन में रहने वाले हमारे मीका पाजी के लिए ये गाना जरूर बनता है। मीका सिंह और पंकज कपूर की आवाज।

वेलकम बैक दोस्तों। आज वैसे बर्थडे है बॉलीवुड का असली रॉक स्टार मीका सिंह का, और मीका पाजी के बारे में एक लाइन तो जबान में जरूर आ जाती है ना, ये बंदा जीता है शान से। आज नमस्ते भारत में जीते हैं शान से इस सेगमेंट में। इस बंदे के बारे में अगर हम जान ले तो वो कैसे शान से जीते हैं, आइए देखते हैं। हर किसी को आलीशान गाड़ियां दिखती हैं, प्राइवेट जेट दिखता है, या फिर वो कीमती डायमंड का ब्रेसलेट, मगर पता है राजाओं जैसी मेहनत करने वाले इस बंदे ने शान सिर्फ पैसों से नहीं बड़े दिल से भी कमाई है। लॉकडाउन का समय याद कीजिए, मीका दी वोटी ये उनकी जो संस्था है ना, इसी संस्था से उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया था। अपने दोस्तों को महंगे महंगे तोहफे देने में भी वे काफी मशहूर है। लोग कहते हैं अरे मीका पाजी का दिल सोने का है, वो कमाते भी शान से हैं और लुटाते भी शान से हैं, है ना। तो ये बात जब हम करते हैं तो हर किसी को शायद इस बात का अंदाजा आ जाए कि यार ये बड़े बड़े स्टार्स भी अपनी जिंदगी में सच में कुछ अनोखे अंदाज में जीते हैं और हर किसी को बड़े शान में पार्टी देते हैं। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से आप सभी के लिए इन गीतों की और सदाबहार बातों की। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग। नमस्ते भारत में।

रियासत हुसैन सिद्दीकी हमारे संग जुड़े हैं, अपने पूरे परिवार के संग उत्तराखंड से हैं। पूजा जी जुड़ी हैं नवी मुंबई से, आदर्श कनौजिया जी भी दादर मुंबई से जुड़ चुके हैं, और मंगेश रोकड़े जी नासिक से हमें मैसेज करते हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है भैया। और राजकुमार कुमार जी सुलेर जवरगी यहाँ से हमें मैसेज करते हैं। आनंद मुकाशी जी भी जुड़े हैं, विजेंद्र घटोल हैं, इन सभी के संग जितने सारे नए नाम जुड़े हैं ना, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और FM रेनबो पर जो बात हम कर रहे हैं ना, उसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। फराह खान है ना, जाने मानी फिल्म मेकर कोरियोग्राफर, उन्होंने दिल्ली में एक बार मीका सिंह के घर पर दावत दी। अब देखो, वो सिर्फ घर नहीं, वो फार्म हाउस कहलाता है ना, 100 एकड़ की जमीन, बड़े बड़े जबरदस्त इलाके में सजे हुए वो फार्म हाउस के अलग अलग घर, और साथ ही अंदर गुरुद्वारा भी है, अंदर हेलीपैड भी है, मंदिर भी है, और क्या क्या नहीं है भैया वहां पे। जब फराह खान ने पूछा कि कैसी तुम्हारी शुरुआत हुई यार करियर की, बोले 6 साल में मैंने सोचा नहीं यार, ये मेरा ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो बस 5वीं 6वीं तक ही स्कूल किया और उसके बाद छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिंगिंग की ओर रखा। मगर शुरुआत में आपको लगेगा कि मीका सिंह जो ऐसे हम सभी को नचाने वाले गाने गाते हैं, उन्होंने कीर्तन भी किया है। नहीं जल्दी बताऊंगा, सुनते रहना ये गीत।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: श्रोते हो, तुम्ही आता ऐकत आहात ती अज्ञात मुंबईची वरळीच्या बांधाची गोष्ट। ह्याच्या पुढच्या भागांमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या तुम्हाला माहीत नसलेल्या अशा गोष्टी घेऊन येतोय, म्हणजे राणीच्या बागेची गोष्ट, राणीच्या पुतळ्याची गोष्ट आणि मुंबईतल्या सगळ्यात पहिल्या #5star हॉटेलची गोष्ट।
6: अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम आपल्याला ऐकायला मिळेल सकाळी 7:45 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर
5: आणि एनी टाइम न्यूज ऑन AIR या ॲपवर।

देखते देखते 10:47 हो चुके हैं और मुझे अब जाने का समय तो जरूर आ गया, मगर कुछ लोग अभी भी उस सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं कि अरे यार कैसे उन्होंने कीर्तन से शुरुआत करी। अब हुआ कुछ यूं, वो कहता है कि मेरे और मेरे भाई में जितने सालों का अंतर है ना, तो मैं उन्हें फॉलो करता रहा और उनकी भी शुरुआत लग, वो तो कहते हैं कि पंजाब के ज़्यादातर सिंगर्स की शुरुआत गुरुद्वारे में कीर्तन गाकर होती है, और जब कीर्तन में हम हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि यार किस तरह समय बीतता चला जा रहा है, हम बस अपनी सेवा में जुटे रहते हैं और वो कुछ ऐसी सेवा करते रहे और गुरुद्वारा से उन्हें मानो कुछ यूं दुआएं मिली कि वो बन गए द ग्रेट मीका सिंह। आप ये बात भी सोचिए, लगातार 20 सालों तक कैसे कोई पार्टी एंथम कर सकता है अपनी आवाज से, ये सिर्फ मीका पाजी कर सकते हैं। उनका एटीट्यूड हो, उनकी आवाज की कड़कड़ाहट हो, उनकी स्टाइल, ये सब कुछ अनमैचेबल है ना। हाँ, हालांकि कभी कभी कंट्रोवर्सीज के जरिए उनका नाम लोगों के जुबान पर आया, मगर हमेशा सिर उठाकर और शान से जीना ये उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, बैकफुट पर खेलना कभी सीखा नहीं। उनके जब गाने बजते हैं तो कोई भी अपनी जगह पर बैठ नहीं पाता यार, मैं भी स्टूडियो में कुर्सी छोड़कर थोड़ा अब बीट गानों के संग इंजॉय कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, कई सारे गाने हैं ना वो पार्टी में मज़ा दोगुना कर देते हैं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें FM रेनबो की ओर से मैं आरजे अमित ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जाते जाते उन पर उनकी आवाज़ से सजे दो गाने मैं आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आरजे आ जाएगी 11 बजे, आप समाचार सुनेंगे, समाचार के उस पार अगला प्रोग्राम, तो बने रहना FM रेनबो पर, और जल्दी हमारी अगली मुलाकात होगी, तब तक हमारा इंतजार करते रहना। और पता है ना हम क्या कहते हैं, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे, तो जुड़े रहना हमसे है ना, और FM रेनबो सुनते रहना, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसा नायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी परिणाम है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य प्रशासन में बड़े पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकुशलता बढ़ाने और फैसलों में तेजी लाने के लिए विभागों की संख्या 33 से बढ़ाकर 43 की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस पुनर्गठन के तहत कोई भी नया पद नहीं बनाया जाएगा। इसके बजाय विभागों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उनके कामकाज और जिम्मेदारियों का दोबारा बंटवारा किया जाएगा। अफगानिस्तान ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने देश के भीतर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान की ओर से इन हमलों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं हूं आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में, यानी ब्रेक फ्री कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

जी हाँ, समय ठीक 11:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। कवि मोहम्मद इकबाल का ये गीत हर भारतीय को हमेशा याद रहता है। हमारा देश भारत एक प्राचीन देश है। हमारे देश के महापुरुषों ने भी यही सिखाया है कि हम देना सीखे, हम दूसरों को कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहे जिससे दूसरों का भला हो सके। यानी हमारे देश में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही हमारे भारत की संस्कृति है, विरासत है। यानी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए हम भारतीय हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ सालों पहले जब हमने कोविड का

सामना किया था। तब उस समय पर भारत ने दुनिया के कई देशों की सहायता की और पूरी दुनिया ने भारत के इस कदम की तारीफ की।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो,

0: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: जी, समय ठीक 11:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। मैं हूँ RJ किरण माला, इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक। तो थोड़ी देर पहले हम दूसरों को कुछ देने की बात कर रहे थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि देश विदेश में रहने वाले कई लोग अपनी पसंद के हिसाब से अच्छे कार्यों के लिए पैसा देते हैं, फिर चाहे वो ओल्ड एज होम हो या अनाथ आश्रम हो या बच्चों की एजुकेशन हो। और जो लोग इस तरह दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें देखकर हर किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। अगर आप अपने आसपास की दुनिया में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी तकलीफ में है, तो हमें ऐसे लोगों के लिए उदार होना पड़ेगा, यानी उन्हें हमारी सहायता चाहिए।

जी हाँ, समय ठीक 11:25 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। खास तौर से देश के युवा इस काम में आगे आकर ऐसे लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें सहायता दे सकते हैं, जैसे गरीब कैंसर मरीजों की सहायता करना, स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाने का काम, ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की देखभाल करना, और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेवा का काम करती है। आप उन संस्थाओं से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर धन देकर भी सहायता कर सकते हैं और अपना समय उन्हें देकर भी सहायता कर सकते हैं। धन नहीं है तो समय तो है आपके पास, तो समय देकर उनकी सहायता कर सकते हैं।

0: मोस्ट डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यू

0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 11:31 हुए हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेवा का काम करती हैं, आप उन संस्थाओं से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वैसे दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में देने की बात कही गई है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं उस कमाई में से कुछ पैसा किसी अच्छे काम के लिए दान करें, और यदि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम अपना समय खर्च करके दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो इंसान अपना समय और अपनी काबिलियत किसी दूसरे की सहायता में लगाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय धन से भी ज़्यादा कीमती होता है।

जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ RJ किरण वाले से मैं आपके साथ। बहुत बार लोग अपना पुराना सामान, अपने पुराने कपड़े या राशन देकर भी सहायता करते हैं, तो चलिए हम भी कोई ना कोई सहायता का काम अवश्य करेंगे। वैसे हमारे देश में हमेशा कहा गया है, इंसान ही इंसान के काम आता है। दुनिया के सभी देशों में उपहार देने की परंपरा रही है। आप भी चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को एक प्यारा सा गिफ्ट देकर दे सकते हैं, जिससे उस इंसान की ज़िंदगी के कुछ तकलीफ़ें कम हो जाए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत सारी हम देने लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे बातें भी होनी चाहिए जो हमारे पास है, हम उन्हें कुछ देकर सामने वाले की सहायता कर सकते हैं। जैसे भी हो वैसे हम जितना भी कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: जी हाँ, इस समय ठीक 11:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि दुनिया के सभी देशों में उपहार देने की परंपरा रही है, आप भी चाहे तो किसी ज़रूरतमंद को एक प्यारा सा गिफ्ट दे सकते हैं। इंसान एक काम को बहुत खुश होकर करता है, वो है उपहार देना यानी गिफ्ट देना, जो बहुत अच्छी तरह से सोच विचार से किया जाता है। यानी दूसरों को अपने प्रेम के बारे में बताने के लिए उपहार एक अच्छा तरीका है, यानी गिफ्ट देकर अपना प्रेम बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं व्हाट्सएप पर। जी हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा मैसेज आया है अशोक पाटिल कोलीवाड़ा से। वो लिखते हैं कि मैडम, मैं भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का सदस्य था, यानी वो काम करते थे। मैं हॉस्पिटल जाकर मरीजों को ब्लड देता था और मरीज के चेहरे पर खुशी देखकर आनंद मिलता था। अभी मैंने देना बंद किया है क्योंकि उनकी आयु 64 साल की है। अशोक पाटिल वर्ली कोलीवाड़ा से लिखते हैं। जी बहुत अच्छा लिखा है आपने। और इसी तरह से एक और श्रोता है जिनका नाम है शुभ लक्ष्मी जी। वो लिखती हैं कि कभी अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदार बीमार हो तो हमें उनको जाकर मिलना चाहिए और उनको मोरल सपोर्ट देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही है। और वैसे बहुत सारे श्रोता इस समय गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं, जैसे प्रमोद चिंचोलकर जी, पंकज मोहोड़ अमरावती से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, बाबा दादर से, और हैं प्रणव शिंदे जी हैं, राजेंद्र परमार जी हैं, विजेंद्र घटोल, ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय हमें नमस्कार और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

जी हाँ, इस समय ठीक 11:53 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस समय प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री। तो यहाँ पर प्रणव शिंदे ने बहुत ही खूबसूरत बातें लिखकर हमें भेजी है व्हाट्सएप के ज़रिए, वो मैं पढ़ देती हूँ। मांगने से कभी किसी का दामन भरा नहीं करता, देने वाले का दिल कभी छोटा हुआ नहीं करता। जो लुटा देते हैं खुशियां औरों की राहों में, उनके नसीब का सूरज कभी ढला नहीं करता। देने वाले की नीयत और उसका हौसला देखो, हाथ खाली भी हो तो दुआएं तमाम देता है। लेने वाले तो सिर्फ अपनी ज़रूरत देखते हैं, देने वाला हर किसी को एक नया मुकाम देता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। तो चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गाना। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस समय ठीक 12 बजे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। भारत के निर्वाचित

प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अमेरिका के अनेक सांसदों, उद्यमियों और भारतीय मूल के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बदलाव लाने वाला रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकप्रिय फिल्म निर्माता, अभिनेता और निर्देशक भारतीय राजा का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। वे काफ़ी समय से बीमार थे। उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर और 6 तमिलनाडु फिल्म पुरस्कार मिले। वे तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी लोकप्रिय रहे। नागपुर पुलिस ने ओडिशा से आ रहे एक ट्रक में स्टील कॉइल्स के नीचे छिपा कर रखा था 150 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा जब्त करके अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गांजे की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है, अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

इस समय ठीक 12:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में खूब धमाल करने वाले हैं हम, क्योंकि आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सिंगर के गाने हम आपको सुनवाएंगे जिनके गानों में भी सिर्फ मस्ती, छेड़छाड़ और डांस है, क्योंकि आज है इनका हैप्पी हैप्पी बर्थडे। इनका नाम है मीका सिंह। तो मीका जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और श्रोताओं, व्हाट्सएप के जरिए मीका सिंह के किसी भी गाने के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: जी हाँ, समय ठीक 12:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। जो भी गाना सुना, पार्टी तो बनती है। इस गाने को सुनना चाहते थे पंकज महोड़ और उन्होंने बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट भेज दी है, एक से बढ़कर एक जो डांसिंग बेस गाने हैं। जी हाँ, इसी तरह बहुत सारे श्रोता है जो कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, यानी गानों की लिस्ट भेज रहे हैं भाई। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गाना।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर

0: फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: जी हाँ, समय ठीक 12:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। मीका सिंह का जन्म 10 जून 1977 को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था। मीका सिंह के पिता श्री अजमेर सिंह एक ट्रेन क्लासिकल संगीतकार थे और गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे। मीका सिंह भी उनके साथ इस कीर्तन में हिस्सा लिया करते थे। यहीं से मीका सिंह की संगीत की यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ पर एक श्रोता है जिनका नाम है प्रणव शिंदे जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे हैं मीका जी के लिए। अपनी दमदार आवाज़ से सबको नचाने वाले, दिलों पर राज करने वाले किंग का है आज दिन। शुरू के सरताज और महफिलों की जान मीका बाजी, महफिल में सब जब आप गाते हैं तो हर कोई झूम उठता है। आपकी आवाज़ का जादू हर किसी के दिल को छू देता है। बॉलीवुड के असली रॉक स्टार मीका सिंह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आपका जलवा यूं ही बरकरार रहे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत। और इसी तरह से सुरेश वैष्णव जी भी हमें सुन रहे हैं और साथ ही राकेश माथुर जी हाँ पुणे से। तो सुनते हैं इनकी पसंद का गाना मौजा ही मौजा।

अभी से कुछ ही पलों में यानी ठीक 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT से उमंग कार्यक्रम। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM रेनबो। और ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जिसमें आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने। तो जल्दी से अपनी पसंद के गाने हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि हम उन्हें देख सकें आपने कौन कौन सा गाना भेजा है। 1980 से लेकर 1990 के बीच के सभी हिट गाने हमें आप भेजिए, तो हम उन्हें प्ले करेंगे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी

0: श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की,
1: जी
0: तो आज
1: आज अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे।
1: जी
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
1: जी
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
1: जी
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भून कर एक पेय बनाया।
1: जी
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की,
1: जी
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि यह समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी,
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
1: जी
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पी उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओ।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ हैं जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: अच्छी।
1: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
0: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
0: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
1: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
0: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
1: बिल्कुल।
2: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो आप अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। इस समय ठीक 1:05 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने, तो आज हम सुनेंगे 1980 से लेकर 1990 के बीच के बेहतरीन गाने। तो आप इन 80 से लेकर 90 के बीच के गानों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। इस गाने को पसंद किया है अजय साखरे इंदौर से और साथ ही प्रणव शिंदे ने। आवाज़ है रूप कुमार राठौड़ की।

इस समय ठीक 1:13 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को सुनना चाहते हैं संजय दर्शन और साथ ही पंकज मोहोड़ और साथ ही गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो इन सभी की पसंद का चलिए सुनते हैं ये गाना।

इस समय ठीक 1:20 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और मैं हूँ आरजे किरण माला इस समय आपके साथ। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को सुनना चाहते हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, यानी इनका पूरा परिवार ये गाना सुनना चाहता है। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार। उससे पहले सुनते हैं ये गाना। इस गाने को पसंद किया है विजेंद्र घटोल अकोला से।

0: श्रोते हो, तुम्ही आता ऐकत आहात ती अज्ञात मुंबईची वरळीच्या बांधाची गोष्ट। ह्याच्या पुढच्या भागांमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या तुम्हाला माहीत नसलेल्या अशा गोष्टी घेऊन येतोय, म्हणजे राणीच्या बागेची गोष्ट, राणीच्या पुतळ्याची गोष्ट आणि मुंबईतल्या सगळ्यात पहिल्या हॅशटॅग फाईव्ह स्टार हॉटेलची गोष्ट।
1: अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम आपल्याला ऐकायला मिळेल सकाळी 7:45 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर
0: आणि एनी टाइम न्यूज ऑन AIR या ऍप वर।
2: कधी कुणी यन, कधी कुणी कसे कष्टले, कष्टले हे मुंबई घडताना।
3: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे किरण माला इस समय आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं और कितने लोगों ने क्या क्या भेजा है व्हाट्सएप के ज़रिए। भाई तो यहाँ पर बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भाई हमारा नाम ही ले लीजिए किसी भी गाने में। तो वैसे तो नाम तो मैं ले ही रही हूँ, और अगर किसी का नाम छूट गया तो प्लीज़ हाई करके लिखे व्हाट्सएप पे 8657661071 पर कि हमारा नाम नहीं लिया गया है। गाने बहुत सारे हैं, कोशिश है कि सभी के गानों की लिस्ट पूरी करूं। तो यहाँ पर हमारे श्रोता है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। और साथ ही प्रदीप अनंत कृष्णन जी ये भी हमें सुन रहे हैं और गानों के बारे में भी लिख रहे हैं। ये फिल्म के गाने अभी हमने सुना, ये फिल्म के, ऐसे बहुत सारे गाने जो उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए लिखा है। और साथ ही विजेंद्र घटोल अकोला से लिखते हैं कि सभी की फरमाइश बहुत अच्छी है। जी हाँ, थैंक यू, है ही हमारे श्रोता इतने अच्छे कि एक से बढ़कर एक गाने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं। और साथ ही दिग्दर्शन और कविता जो कि मेरठ से हमें सुन रहे हैं, उन्होंने गानों की लिस्ट भेजी है। हमारी कोशिश है कविता और दिग्दर्शन जी हम आपकी फरमाइश पूरी कर सकें। और साथ ही और भी श्रोता है, एक श्रोता है जिनका नाम है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से, उन्होंने भी गानों की रिक्वेस्ट भेजी है। संदीप कुमार जी ने भी भेजी है। और है दशरथ राम राव कदम लातूर से, ये भी हमारे प्रोग्राम में सहभागी हैं। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, बने रहिए हमारे साथ।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

1:55 हुए हैं, यानी समय मुझे बता रहा है कि किरण माला आपका जाने का समय हो गया है और हमारे स्टूडियो में मराठी आरजे आ चुकी है एक से बढ़कर एक गानों के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी का नाम अगर रह गया होगा लेने के लिए तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अभी जस्ट मैंने देखा कि एक और नाम आ गया है, रोहित पुणे से, वो भी हमारा प्रोग्राम सुबह से सुन रहे हैं। जी थैंक यू, और आप सभी को दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम सुना है और सुन रहे हैं। तो चले इन्जॉय करते रहिए FM रेनबो के साथ। तो सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना, आदर्श कनौजिया की पसंद का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और FM रेनबो के साथ रहिए।

0: confirms and enhances the role and capabilities of the European and Italian space systems in human exploration of the universe. With Payal Sharma's report, Jigyasa Pandey for Akashvani News.
1: Facebook's parent company Meta today announced that it will establish its first AI-enabled data center in India. As part of the agreement, Meta and Reliance Industries will build a data center with 168 megawatt capacity at Jamnagar in Gujarat, which Meta will lease with options to scale. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of India or RBI will withdraw paper currency notes and replace them with the plastic currency notes from the 30th of this month. Fact-check unit of the Press Information Bureau has termed the claim as fake. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. The India Meteorological Department or IMD has said that Delhi NCR is expected to experience significant weather changes over the next 3 days, with thunderstorms, dust storms and rainfall likely to bring much needed relief from the scorching temperatures. Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim, coastal Karnataka and sub-Himalayan West Bengal are likely to witness heavy to very heavy rainfall at isolated places during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% up in the afternoon session today. The Sensex rose 568 points to 74,487, while the Nifty added 136 points to 23,378 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest-serving elected Prime Minister. Cabinet passes a resolution applauding the historical achievement. Union Cabinet clears development projects worth more than 4,700 crore rupees, including extension of Ahmedabad Metro and government office and residential complexes in Amravati. NDA to meet in New Delhi to celebrate Prime Minister's achievements and completion of 12 years of government. Iran carries out attacks against U.S. bases in Jordan and other targets in Gulf. U.S. responds with strikes on Iranian targets. At least 13 people, including 11 children, killed in Pakistani airstrikes in Afghanistan. And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतंत्र

0: तांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा

0: कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और दो फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके दो फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने

0: इराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है। कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका स्वागत है, यानी कि आपके अपने एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। आज तारीख हो गई है 10 और जून का महीना कह रहा भैया अब तो बारिश आ जाए। क्यों त्राहिमाम नहीं हो रहा है, क्यों मल्हार नहीं बरस रही है, गर्मी काहे पड़ रही है? वेल, मुंबई में थोड़ी जगहों पर मल्हार ने दस्तक दी है, कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई भी है, बूंदाबांदी छोटी छोटी, लेकिन मॉनसून इस बार थोड़ा सा लेट है। तो बस गर्मी से काफ़ी लोग त्राहित भी हैं, चाहे आप नवी मुंबई की बात कर लो, भाई साहब जो है लोग रील बना बना के डाल रहे हैं कि भाई साहब गर्मी से जो है त्राही माम हुआ पड़ा, इतने बड़े बड़े बिजली कट लग रहे हैं, क्या करा जा सकता है, गर्मी का आलम यह है भाई साहब। अब तो एसी के आगे भी आपको एसी को पंखा करना पड़ता है ठंडा करने के लिए, है कि नहीं है? चलिए, मल्हारी मैं बेशक आपके ऊपर बरसा नहीं सकता, लेकिन आपको सुना जरूर सकता हूँ। विशाल ददलानी की आवाज़ में इस घंटे का सबसे पहला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, मल्हारी, नन अदर देन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स में से जो है, नन अदर देन धुरंधर के स्टार जिनका नाम है रणवीर सिंह। वेल, सुनते इस खूबसूरत से ट्रैक को और आज की ये शाम में देखते हैं कि लव यू जिंदगी में क्या आपके सामने मैं परोसने वाला हूँ।

वेलकम बैक। आपने सुना है बड़ा ही खूबसूरत सा गीत उदित नारायण साहब की आवाज़ में, अलका याग्निक की आवाज़ में, लेकिन वक्त के साथ में अब अगला ट्रैक मैं आपको सुनाऊं। बताना चाह रहा हूं कि अगला जो ट्रैक होने वाला है वो भी बारिश से जुड़ा हुआ है, और बारिश के साथ साथ में भाई साहब अब तो ट्रेन के अंदर छात होगी और आपके रेनकोट की जो है बारिश लगने वाली है। वो जो होता ना, बिल्कुल जैसे हमारे बॉर्डर हमारे सैनिक जो है तैनात होते हैं, इसी तरह से हम लोग भी तैनात होते हैं किस तरीके से ट्रेन में चढ़ने के लिए। भाई साहब आपने देखा होगा बैग को टांग लेंगे, पीछे छात है वो कर लेंगे फोल्ड, साथ हमने जेब में जो पीछे पर्स रखा हुआ है वो रख लिया आगे, ताकि कोई जेब का तरह हमारी जेब पर नज़र ना डाल सके। और भाई साहब बारिश वाले जूतों की तैयारी हो चुकी होती है। कभी कभार ऐसा होता ना भाई साहब ने पूरा फुल जो है रेनकोट पहन लिया, छाता ले लिया और पूरी तैयारी के साथ घर से निकला, और भाई साहब बारिश ना हो पूरे दिन, आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय, मतलब अपने आप को इतना कोस देते हैं भाई साहब जो पूछो मत, है ना। और जिस दिन नहीं लेके जाते हो भाई साहब, उस दिन बारिश जो है वो किसी और आलम पर आ जाती है और आप कहते हो अरे यार हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। पर इसके पीछे कला की मामला है, और वो मामला ये है कि आप लेके जाओ ना जाओ बारिश तो होती ही है। और जहां तक बात करूं फोरकास्ट के ऊपर भरोसा रखने वाली आप समझदार हैं। अगला ट्रैक आपके समक्ष आ रहा है एश किंग की आवाज में।

0: अशा स्कीमच्या टेली लॉ न्यायबंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदेविषयक मदतीसाठी टेली लॉच्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबरवर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइटवर माहिती मिळवू शकता.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

वेलकम बैक दोस्तों, आपने सुना यारियां का ये खूबसूरत सा ट्रैक मोहम्मद इरफान खान, तो नहीं कहूँगा मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। वल इतना कहना चाहूँगा कि वक्त जो है कब बीत जाता पता ही नहीं चलता ना। ये यारे नाम की जो फिल्म आई थी उस वक्त पर काफ़ी बड़ी सुपर डुपर हिट थी, लेकिन उसके बाद में इसकी फ्रेंचाइजी सोचा गया था बनाई जाएगी, लेकिन फिल्म जो है वो आगे आए ही नहीं। और इसी तरह की कई सारी फिल्में हैं जो शुरुआती तौर में हमें लगती हैं ज़बरदस्त हिट हुई हैं, इनके सीक्वल्स आने चाहिए, लेकिन जैसे धुरंधर का आपने देखा पार्ट वन आया, पार्ट टू आया, डॉन का भी पार्ट वन आया, फिर पार्ट टू आया, और जब डॉन थ्री किया है तो भाई साहब हिलाई दिया। वेल काफ़ी सुर्खियाँ बटोर लिए हैं डॉन थ्री ने। एक तरफ हैं नन अदर देन फिल्म के प्रोड्यूसर जगत, और एक तरफ है एक्टर जगत, और दोनों के बीच की जो बातचीत है आज की तारीख में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं या सोशल मीडिया हैं उन सब की खबरों में बनी हुई हैं। वेल आप डॉन तो कितनी बार देख चुके हैं, हम सभी जानते हैं कि भाई साहब उसका हर एक डायलॉग जो है कल्ट होता है, भाई साहब अलग अलग ही लेवल की जो है उसकी जो है मतलब कहूँगा फैन फॉलोइंग है। लेकिन आज के दौर में जो फिल्में आ रही हैं वो कौन सी फिल्म है जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हो 8657761071, क्योंकि अब जो है बैक टू बैक फिल्में तो आ रही, लेकिन अगर बात करो धुरंधर के बाद में कौन सी ऐसी हिट आई है जिसको आप देखना पसंद करोगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वरुण धवन की फिल्म भी रिलीज़ हुई थी और उसके साथ में और भी फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल सुनसान सा जो है वो एक आवाज़ आ रही है, मतलब कोई सुपर डुपर हिट फिल्म जो है, क्योंकि डेविड साहब की जो कॉमेडी है वो हम सभी जानते हैं ज़बरदस्त है, वरुण की टाइमिंग अच्छी है, और जहाँ तक बात करूँ दोनों हीरोइनों की वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रही हैं। लेकिन बात करें फिल्म पर्दे पर, सिर्फ फिल्म अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, फिल्म की किस्मत भी अपनी नसीब लेकर आती है। आप सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज़ देख कर फिल्म देखना चाहते हैं, या फिर आप पहले स्टारकास्ट देखते हैं फिर उसके बाद आप जाते हैं, या फिल्म की कहानी के बारे में आप ट्रेलर से जज करते हैं। 8657761071, यानी कि 8657661071 पर आप हमें बता सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज में जाकर आपको लिखना है कि आपकी फेवरेट फिल्म जो आने वाली है और आप कहां से शो को सुन रहे हैं।

0: देखिए जी, तो फिराओ तो मैं हम भी आ गए हैं और आपको आते आते बता गए हैं कि अब बहुत ही बढ़िया एक मुहिम शुरू हो गई है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कि आपको अब चर्च गेट के स्टेशन पर मिलेगा एक लाइब्रेरी का एक छोटा सा दरवाजा। आए हाय, जो किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं भाई साहब, उनके लिए खास सौगात है, जहां पर ना लगेंगे कोई पैसे, बस अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। और ये मुहिम जो है अभी शुरू हुई है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले भी नहीं कहूँगा, 5 तारीख से शुरू हुई है। जी हाँ, अगर आप किताबों को पढ़ने के शौकीन हो और जेब में सोचते हो भाई साहब पैसे कहाँ से खर्च करेंगे यार, क्योंकि आज की तारीख में तो लाइब्रेरी वाले भी इतने चार्ज कर रहे हैं, तो बताना चाहूँगा कि फ्री लाइब्रेरी है। ये फ्री लाइब्रेरी खुली है चर्च गेट के ठीक स्टेशन पर, और आज मैं भी किताब लेकर आया हूँ और उस किताब का नाम है 20,000 Leagues Under the Sea। मुझे भी कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक है। अगर आपको भी कहानियाँ पढ़ने का शौक है, कविताएं पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है, और आप चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी का हिस्सा बने, तो आप जाइए वहाँ पर, बस आपको अपनी एंट्री करानी है, 2 हफ्ते के अंदर किताब वापस कर देना। ये नहीं घर रह लाके जो है वो किताब को बस रख लिया और भूल गए, है ना। और अगर अपने पास में कोई खाली किताब पड़ी हो जो काफ़ी टाइम से आपने पढ़ रखी हो, आपके अलमारी में कहीं दुबक के बैठी हो, इस पर धूल जम रही हो, आप चाहो तो धूल साफ करके वो लाइब्रेरी में जमा कर देना, बच्चों के पढ़ने के काम आएगी, और क्या पता आप ही का कोई जानने वाला उससे पढ़ ले, है ना। क्या बहुत ही बढ़िया मुहिम है, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो लाइब्रेरी जो है उसे पैसे भी लेती है और आपको अलाउ भी नहीं करती कि आप घर जाके पढ़ सको, क्योंकि पता है कि आप भाई साहब नालायक हो, किताब ले गए तो वापस नहीं करोगे। यहाँ पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट वाली बात है। एंट्री करवाते हैं आपकी जो है एक प्यारी सी डायरी में, और आपसे कहते हैं भाई साहब अगर हो सके तो वापस कर देना। ऐसी डायरी, ऐसी किताब, ऐसी लाइब्रेरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और एक किस्मत जो है आपको मिलेगी चर्च गेट पर। 5:41 हो चुके हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगा और बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनाऊंगा। अगला ट्रैक होगा श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुन रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी

जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी

वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल इस घंटे के आखिरी ट्रैक जो आपके समक्ष हाजिर होने वाले हैं, अगला जो गाना होने वाला वो है अमित त्रिवेदी की आवाज़ में, नैना दा क्या कसूर। वह नैनो का तो कोई कसूर नहीं होता, नैनो का इतना कसूर होता है कि अगर गलत जगह पर लड़ जाएं तो ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और सही जगह पर लड़ जाएँ तो ज़िंदगी बना देते हैं। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने वाला है, जो ये होने वाला है नन अदर देन आयुष्मान खुराना की फिल्म से।

फिल्म में जबरदस्त कारोबार भी किया था, इस फिल्म ने जबरदस्त नाम भी किया था। लेकिन बात करें आयुष्मान खुराना की, जो पिछली कुछ फिल्में आ रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास धमाल नहीं दिखा पाई, चाहे वो मैं मेरी पत्नी और वो हो या फिर उससे पहले चंडीगढ़ करे आशिकी वाली जो फिल्म थी वो। उम्मीद है कि जिस तरह के खूबसूरत कलाकार हैं वो, जिस तरह की आवाज़ के मालिक हैं वो, और जिस तरह कई सारी प्रतिभाओं से सुसज्जित हैं, बहुत जल्दी उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगेगी और आपको थिरकने का मौका मिलेगा।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल जहां तक बात करें अगर हम गानों की, तो गाने तो बैक टू बैक आप सुन ही रहे हैं, और उसके साथ साथ में आज की तारीख में दरकार हो रही है भाई साहब बारिश की। हर आदमी गुहार कर रहा है भाई साहब बारिश हो जाए तो क्या है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मज़ा ऐसा आ जाए, गर्मी का जो आलम है थोड़ा सा सही हो जाए। लेकिन देखा जाए तो बारिशों के भी अपने एक अलग मायने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी की किस कश्ती में हो। एक तरफ अमीरों की कश्ती है और एक तरफ गरीबों की। वो कहते हैं कि अमीर के घर में बारिश बस एक मौसम का नज़ारा है, और गरीब की छत टपके तो ज़िंदगी का किनारा है। कुछ लोग तो बस बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए बारिश की बूंदों का लुत्फ लेना चाहते हैं, और कुछ लोग बारिश में अपने घरों की टीनों की मरम्मत कराना चाहते हैं। फ़िलहाल आप ज़िंदगी के किस पहलू में किस तरफ अपने आप को पाते हैं, यह मायने रखता है बारिश का, नहीं आपकी ज़िंदगी का वो पल जो आपकी जेब की बारिश को दिखाता है। फ़िलहाल TDS की बारिश हो सकती है, क्योंकि भाई साहब अब जो है बहुत जल्दी टैक्स जो है आपको पे करना है, और वो टैक्स अगर आपका इनकम के दायरे में इस तरह से आता है कि TDS आपका रिटर्न हो, तो जेब में आपके पैसों की बारिश वापस होगी। और इसी तरह से आप अपनी जो है इनकम टैक्स को फाइल करना ना भूलें, क्योंकि वही आपकी छत की रिपेयर भी करेगी और वो आपकी ज़िंदगी की भी मरम्मत करेगी।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: क्या बात है, मतलब ये सर्विस अगर मिल गया है तो भाई साहब मजेदार है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम सोचते थे यार कुरियर कर रहे हैं भाई साहब, कुछ सेफ घर पे पहुंचे ना पहुंचे, मन में अजीब तरह की बातें चलती रहती थी यार, नहीं यार कुरियर सेफ नहीं यार क्या करें। मतलब अभी फिर सोचते हैं यार कि अब किसी प्राइवेट कुरियर सर्विस को देते हैं, फिर उसके चार्जेस देख के भाई साहब जेब देख लेते हैं यार, जितने का सामान नहीं है इतना तो चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी है पोस्ट की 24 आवर्स वाली, ये तो मजेदार है ना। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेट फ्रेंडली जो है चीज़ों पर आगे बढ़ना है, और अब तो इसमें बाहर सिक्योरिटी वाली बात भी है, OTP के मिलेगा सामने वाले को और उस OTP के जरिए आप अपना पार्सल रिसीव कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो चलिए ये तो बढ़िया हो ही गया, और ऊपर से बिजली भी फ्री मिलने की वाली बात हो गई है। वैसे बिजली को लेकर तो बहुत कलेश चलता रहता था भाई साहब, अरे पंखा बंद कर दे, अबे AC बंद कर दे, अबे क्या कर रहा, फ्रिज खुला छोड़ दिया, हे भगवान मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है यार ये। तो मन में बिजली को लेकर ना कई सारी जो है मशक्कत चलती रहती थी, अरे यार बिजली का बिल आएगा भाई, थोड़ी देर गर्म बैठ जाते हैं, अरे AC जो है ठंडा कूल हो गया थोड़ी देर बंद कर देते हैं, अरे नहीं यार एक काम करते हैं TV बंद करते हैं, वहाँ की लाइट बंद है। मतलब बिजली को लेके देखो बिजली बचाना अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब बिल जब देखते थे तो भाई साहब ऐसा लगता था यार बिजली का बिल नहीं है तो हार्ट अटैक का दिल है ना। लेकिन अब जब से ये वाली मुहिम शुरू हुई है जिसके अंदर भाई साहब सोलर पावर लगवा लीजिए और बिजली पूरी मुफ्त पाइए, बढ़िया सौदा हो गया कि नहीं हो गया है। मतलब जेब अगर थोड़ी सी किफ़ायती हो जाए तो जीवन के सपने साकार करने में मदद मिलती है। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, इससे पहले एक खूबसूरत सा दोहा आपको सुनाना चाह रहा हूँ, या यूं कहो कि बड़ा ही खूबसूरत सा ये शेर है साहिर लुधियानवी साहब की आवाज़ में, कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, किस लिए, क्योंकि तुझसे वापस मिलना कब होगा ये पता नहीं रहता। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, खूबसूरत सा ट्रैक है ये, और ये ट्रैक है गुलजार साहब की आवाज में, श्रेया घोषाल और शान की आवाज में, मैं घूमता हूं।
4: बगलों की तरह मैं घूमता हूं, मैं घूमता हूं, मैं घूमता हूं, कस्तूरी हरन जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपर हिट ट्रैक्स। और आपने सुना ये 90s का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स में से एक ट्रैक जो है फिल्म माचिस से। 6:59 और 53 सेकंड हो गए हैं और इस घंटे का आखिरी ट्रैक आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होगा। और परवीन शाकिर की आवाज़ में तो नहीं कह सकता, पर उनकी लिखी हुई एक बड़ी ही खूबसूरत सी पंक्ति है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा

बाहर कोई भाई साहब घंटी बजाता और जैसे आप दरवाजा खोलते हैं उसके हाथ में रजिस्टर होता है और पेन होता है और वो आपसे पूछता है घर में कितने कमरे हैं। आप सोचते हैं भाई साहब ये अचानक से कौन आ गया, क्यों पूछ रहा घर में कितने कमरे हैं। फिर वो पूछता है घर में आपकी गाड़ी है, हैं गाड़ी के बारे में क्यों पूछ रहा भाई ये है। फिर पूछता है एसी है, टीवी है, तो रंगीन है, घर में वाईफाई लगा हुआ है। आप सोचते भाई साहब घर के अंदर को रेड वेड तो नहीं पड़ गई है, मम्मी को बुलाइए जरा है, पापा को फोन कर। मतलब दिल सकपका जाता ना एकदम से, अचानक से घर के बाहर कोई आ जाए और आपसे ऐसे सवाल करने लग जाए। आप भी सोचते यार पापा ने तो हमें कभी बताया नहीं था कि उन्होंने तिंगम करी है यार, है, है, है, सारे पैसे उन्हें पास रख लिए, हमें तो 1 रुपए की पेंसिल दिलवा देते, 5 रुपए के पेन दिलवाने में रोते हैं और भाई साहब यहाँ पे घर पे छापे पड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ किस्से जो हैं आम जिंदगी में थोड़े दिनों पहले सुनने को मिले हैं, पर ये किस्से मैं बताना चाहूंगा बड़े ही इंटरेस्टिंग भी थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये आदत नहीं, घर पे कोई अगर अचानक से आ जाए तो मुझे कैसे हैंडल करें, हमें कहीं ना कहीं लगा रहता है यार भाई साहब इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना है। लेकिन बताना चाहूंगा कि अभी आजकल जो जनगणना योजना चल रही है उसके अंदर लोग जब घर घर पर जाकर पूछताछ करते हैं तो वो इसी तरह से उन्हें बातचीत करनी पड़ती है, घर में कितने कमरे हैं, कितनी रसोई है, कौन सा साधन आप इस्तेमाल करते हो। तो इसमें आपको पूरा सहयोग देना, डरने की वाली बात नहीं है, जो भी बात है चौड़े में बतानी है, सच्ची बात है, ठीक है ना, कोई छापा वापा नहीं है भाई, देश में जनगणना हो रही है। फिलहाल अगला ट्रैक आपके समक्ष मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज कार्यक्रम हम तुम में, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगा ये दो खूबसूरत गानों के बाद में। फिलहाल सबसे पहला ट्रैक आने जा रहा है सोनू निगम की आवाज में, बॉर्डर से, कि घर कब आओगे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 7:10 ठीक 28 मिनट हो चुके हैं। अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर होने वाला बहुत जल्द, लेकिन मोहरा के सारे ही ट्रैक खूबसूरत हैं, चाहे टिप टिप बरसा पानी का नाम ले लो, चाहे वो ना कजरे की धार का नाम ले लो। इस गाने ने तो चार चांद लगा दिए थे, लेकिन बताना चाहूँगा ना कजरे की धार जब आप गाना सुनेंगे तो उसके बारे में भी बड़ा एक खूबसूरत सा ट्रिविया है। लेकिन बात करूँ अगर इस फिल्म की तो बताना चाहूँगा कि रवीना टंडन जी से पहले इस फिल्म में साइन किया गया था दिव्या भारती जी को, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो बहुत जल्दी हमसे दूर हो गई, लेकिन दिलों के पास आज भी हैं। और उसके बाद में ये रोल कंसिडर किया गया ऐश्वर्या बच्चन जी के लिए, जो उस वक्त मिस वर्ल्ड के लिए जो है वो कॉम्पिटिट कर रही थी, और जो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो खिताब को अपने नाम भी कर लिया। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी साहब एक सामने एक ही सीन में नज़र होते हैं, लेकिन इसमें सुनील शेट्टी साहब जो थे वो नेगेटिव रोल में थे। लेकिन इस फिल्म के अंदर जब नसरुद्दीन शाह साहब आते हैं और इसमें चार चांद लगाते हैं, वो काबिल तारीफ था। फिलहाल इसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के जितने भी ट्रिवियाज हैं, चाहे वो फाइट सीक्वेंस की बात कर लो, चाहे वो इस फिल्म के गानों की बात कर लो, चाहे इस फिल्म के आप प्लॉट की बात कर लो, बताया जाता है कि जो फिल्म है ये हॉलीवुड की फिल्म है जिसका नाम था डेथ विश 4 द क्रैकडाउन 1987, उसका अनऑफिशियल रीमेक कहा जाता है इसे। फिलहाल सुनते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को। देखिए, रीमेक हो चाहे सीक्वल हो, भाई साहब मजा आना चाहिए देखने में, है कि नहीं है ना। इससे पहले कि मैं आपको इसका अगला ट्रैक सुनाऊं, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के ठीक बाद आप सुनेंगे पंकज उदास और साधना सरगम जी की आवाज में ना कजरे की धार।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट।
3: वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट फ्रॉम द बीबीसी।
4: Hello, I'm Conor O'Grady at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. The England boss, Thomas Tuchel, says that Bukayo Saka needs to be carefully steered back to full fitness. The Arsenal winger missed part of the climax of the Premier League season due to an Achilles injury.
5: I'm not concerned at all. He can train. He

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

दिल दे दिया है जान तुझे दे देंगे सनम, एक से बढ़कर एक सुपर हिट के गाने आप सुन रहे हैं। फिलहाल 7:42 हो चुके हैं और अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर हो जो होने वाला उदित नारायण साहब की आवाज में, ये जो तेरी पायलों के छन छन है। वेल, आज की तारीख में कई सारे 90s के गाने जिनके रीमेक्स बनकर आ रहे हैं और फिल्में, तो एक से बढ़कर एक सुपर हिट आ रही है। फिलहाल आज की तारीख में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनकी मैं कहूंगा पकड़ तो बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी पकड़ों को ढीला कर रहे हैं साहब सोशल मीडिया। पेड़ी नाम की एक फिल्म आने जा रही है जिसके अंदर फिल्म के मुख्य कलाकार जो होने वाले हैं जाह्नवी कपूर, और साथ में होने वाले हैं फिल्म के लीड हीरो यानी कि साउथ के सुपरस्टार जिनका नाम है, क्या नाम है पता है ना आपको? वेल, कुछ चीजें आपके ऊपर गेस करने में भी छोड़ देनी चाहिए। फिल्म के कलाकार जो है मेन लीड उनको तो खूब सराहा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जाह्नवी कपूर के जो सीन्स फिल्माए गए हैं ट्रेलर के अंदर उन्हें देखकर लोगों ने कहा है, यानी खासतौर पर नेटिजंस ने, यार ये कोई तरीका नहीं है भाई। मतलब आप लीड हीरो को तो भाई साहब इतना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, लेकिन आप जो फिल्म की हीरोइन है उसे आप एक तरह से प्रॉप की तरह यूज कर रहे हो। हाँ, फिल्मी पर्दे पर कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जब फिल्म के कलाकार कुछ हिंदी फिल्मों के अंदर ऐसा काम करते हैं जो काबिले तारीफ होता है, लेकिन जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें शायद दूसरे तरीके से दिखाया जाता है, शायद वो फिल्म की डिमांड हो सकती है, लेकिन नेटिजंस का अपना कहना है। वेल, अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक से बढ़कर एक बंपर फिल्मों का जो ट्रैक है आपके समक्ष हाजिर हो रहा है जो 90s की होने वाली है, ये ट्रैक होने वाला है ये जो तेरी पायलों की झंझन है। ये फिल्म का नाम क्या है? मासूम। 7:44 हो रहे हैं, ठीक इस गाने के बाद होगा एक छोटा सा ब्रेक और फिर होगा एक और खूबसूरत से गानों का कारवां।

0: दिशा स्कीम च्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदे विषयक मदतीसाठी टेली लॉ च्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबर वर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइट वर माहिती मिळवू शकता।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: वेलकम बैक दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। अगले दो ट्रैक जो आपके समक्ष आने वाले हैं वो है अलका याग्निक और अभिजीत सिंह की आवाज़ में, और माफी चाहूँगा अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में है। वेल, ये गाना होने वाला है यस बॉस से, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, इस गाने के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी आपसे वापस मुखातिब होऊंगा। बारिश की मल्हार अब दस्तक दे चुकी है, और उम्मीद है कि अगली बार जब बारिश की बूंदें आपके सर पर पड़ेंगी तो शायद आप बाहर होंगे, छाता आपके हाथ में होगा और आप थोड़ा सा लुत्फ ले रहे होंगे। और बारिश का गाना गा रहे होंगे।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के

0: आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री

बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। रात फिर अपनी नरमी और अपनी खामोशी के साथ उतर आई है। दिन भर की मसरूफियत और धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही, और अब वक्त है उन अल्फाजों का जो शोर नहीं करते, बस एहसासों में समझे जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गजल का एक मिसरा, एक आवाज का लहजा, और दिल खुद ही उन्हें पूरा कर लेता है। मैं हूं आपके साथ ताहिर, और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए जनाब, इस रात को थोड़ा आहिस्ता जीते हैं, कुछ गजलों, कुछ यादों और उन एहसासों के साथ जो अक्सर खामोशी में ज्यादा सुनाई देती हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी कभी जनाब इंसान किसी को भूलना नहीं चाहता और ना कोई उसे पूरी तरह याद करना चाहता है, बस दिल की

0: किसी कोने में एक छोटी सी जगह देकर उसके साथ जीना सीख लेता है। वक्त अपना काम करता रहता है, दिन महीने साल सब गुजर जाते हैं, मगर कुछ नाम, कुछ आवाजें और कुछ दुआएं दिल की डायरी से कभी मिटाई नहीं जाती। और फिर एक शाम एक गजल या एक तन्हा लम्हा उन पर जमी हुई गर्द को हल्का सा हटा देता है और इंसान मुस्कुरा कर कहता है, हां ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई, यानी और होनी है, बाकी है।
1: वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। जिंदगी की सबसे अजीब बात शायद ये है कि इंसान हर चीज का हिसाब रखना चाहता है, मगर एहसासों का हिसाब कभी पूरा नहीं कर पाता। किसी ने कितना दिया, किसी ने कितना छोड़ा, ये सब बातें हैं। असल बात तो ये है कि किसने दिल में कितनी जगह बनाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अपने होने का एहसास छोड़ जाते हैं। शायद इसीलिए खुशी और उदासी कभी अलग अलग नहीं चलती। जनाब, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी का सफर तय करती हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से।

0: 12 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम है रंगे महफिल। बात हो रही है रात की। रात का अपना एक मिजाज होता है। मैंने क्या कहा? यही तो कहा, रात का एक अपना मिजाज होता है। ये जल्दी में बात नहीं करती, ये ठहरती है, सुनती है और फिर धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। दिन भर हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर रात उन्हें फिर से सामने लाकर बिठा देती है। किसी की हंसी, किसी का इंतजार, किसी की नाराजगी या किसी की दुआ, और फिर लगता है कि इंसान सच में अकेला कभी नहीं होता। उसके साथ उसका एहसास हमेशा सफर करता है, चाहे वो बातें अच्छी हों ये यादें पुरानी।

कभी कभी सोचता हूँ जनाब कि अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाता तो शायद किसी गजल की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा ख्वाब और थोड़ी सी उदासी, शायद यही तो चीजें हैं इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। जो बातें हम कह नहीं पाते वो किसी शायर के अल्फाज कह देते हैं, और फिर लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल को की तरफ देखा, देख लिया हो। इसीलिए अच्छी गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जी जाती हैं, और अच्छी आवाजों के साथ।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम चला है रंगे महफिलों। मैं हूँ आपके साथ ताहिर।
3: कौन सी ताकत है कैप्टन जो हमें अपने घरों से, अपने प्यार से, अपने माँ बाप से दूर दूर लाकर कंधों पर बंदूकें रखने को मजबूर कर देती है? हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है, पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खूबसूरत अल्फाज। साहिर साहब की कलम ने क्या लिखा है, सच में बहुत खूबसूरत अल्फाज। बहरहाल ये वक्त है जब थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है कि हमें जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गज़ल आपकी नज़र है, उसके बाद मैं आपसे दोबारा आता हूँ।

ये बता दे मुझे जिंदगी, बताती कुछ भी नहीं है जिंदगी, जीना पड़ता है। फिलहाल मुझे ये बता रही है कि मुझे जाना होगा। अब जाते वक्त तो थोड़ा सा गमगीन हो जाता हूँ हमेशा, लेकिन जाना होगा, वक्त की किल्लत है। तो बहरहाल इसी वादे के साथ जाऊँगा कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में वापस आऊँ। जब तक तो ख्याल रखिए अपना, ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शब खैर, खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा

ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टालो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अजी जनाब, चाहते तो हम भी आपको बहुत हैं और बहुत शिद्दत से चाहते हैं। इसी मोहब्बत और चाहत का ये सिलसिला है जो आज इतने दशक हम साथ चलते चलते आए। कब रेनबो की शुरुआत हुई थी, आज से पहले, इतने सालों पहले, और आज तक चलते चलते कई पड़ाव आए, कई दोहराव आए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारी पीढ़ियां बदली हैं, हमारे चाहने वाले जो हमारे ऑडिशन ऑडियंस हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनमें इजाफा हुआ। और इतने बदलाव के बाद कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ प्यार बढ़ा आपके और हमारे बीच की।

0: जो लाइन थी वो बिल्कुल ही नहीं है, अब तो कभी थी ही नहीं। और इसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि आपकी मोहब्बत हमें कहीं से भी खींच लाती है, लगता है कि अब आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों से मिलने का वक्त हो गया है। लगता है कि इतने बदलावों के बाद भी हम नहीं बदले, हमारी मोहब्बत नहीं बदली। हाँ, टेक्नोलॉजी आई इस दौरान बदलाव के रास चलते, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड हुए, और उसके साथ साथ जुड़ाव हुआ हमारे और ज़्यादा श्रोता मित्रों का, हमारे सभी साथियों का जो हमारे साथ आज भी बदस्तूर बने हुए हैं, देश में नहीं देश से बाहर। और अब चूंकि न्यूज़ ऑन एयर ऐप भी है, आपके और हमारे बीच का एक जो दायरा था इसको और थोड़ा थोड़ा सीमा को कम कर दिया। अब विदेशों से हमारे बहुत श्रोता जुड़ते हैं, देश में भी काफ़ी दूर दूर से हमारे श्रोता मित्र हमारे साथी जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि अब सफ़र शुरू करने का मज़ा ही कुछ और है। चलता रहता है पूरे दिन, हमारे सभी शोज़ के साथ आप जुड़ते हैं। फ़िलहाल इस शो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और शो का नाम है चूँकि ज़ीरो आवर शो, और तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बता दूं कि 00 के आगे 15 भी लग गया, यानी 15 मिनट हो चुके हैं रात के 12 बजकर, और नया दिन शुरू हो चुका है, नया शो शुरू हो चुका है, और 0 आवर बनता है हमारे दिन का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर पहला शो। आप सभी के साथ मुलाकात होती रहेगी, बातचीत हम करते रहेंगे, खूबसूरत गानों को लेकर आएंगे हम आपके लिए, और एक ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं ना जाएं, हमारे साथ रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत 102.6 पर ही भी, और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। मेरे यानी रजत के साथ और प्रोग्राम है जीरो आवर शो। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल स्वागत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

यात्रा लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर

की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया, जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। आधी रात के 1:06 हो चुके हैं और अब शुरू होता है सुहानी रात शो, जिसमें आप एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से, फ्रॉम द एल्बम खो गए हम कहां से, और उसके बाद आप नॉनस्टॉप गानों को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही गानों पिक की बीट्स पर झूमते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी का स्वागत। 2:14 और कुछ सेकंड्स, लगभग 35 सेकंड्स हो चुके हैं और प्रोग्राम है भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। खूबसूरत गाने और अपने हर अपने ज़माने के साथ साथ हर दौर में छा चुके गाने होते हैं मेरी पहली पसंद आप सभी के लिए। और आपसे भी जो सलाहियत मिलती है, इतना साथ मिलता है, स्नेह मिलता है, लगता है कि प्रोग्राम यूं ही चलता रहे। लेकिन शो तो बहुत आते हैं और

0: आने ही चाहिए और हमारे सभी शोज लाजवाब होते हैं, इसीलिए तो आप सभी का इतने अरसे से प्यार हमें मिलता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये साथ हमेशा बना रहे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 के साथ आप सभी का, और ये मोहब्बत हमेशा यूं ही चलते रहे। भुलाए ना बने प्रोग्राम में भी खूबसूरत और ताज़ा तरीन तो नहीं कहूँगा, हर दिल अजीज गानों का एक पूरा गहवारा लेकर मैं हाजिर होने की कोशिश कर रहा हूँ इस संस्करण में भी, इस अंक में भी आज। और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल दिमाग से, आपके जहन से ये गाने जो कभी उतरे ही नहीं, एक बार उनकी याद फिर से ताज़ा तरीन हो जाएगी और आपको पसंद आएंगे। आपकी जो खूबसूरत जो रात है, कहीं कहीं बदली छाई हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई भी है, हो भी रही है, दिल्ली NCR की अगर बात करें तो, और ये कहीं गर्मी से जूझते हुई बारिश की बूंदें, और इन सब के बीच आप तक पहुंचते हमारे खूबसूरत गाने बहुत शानदार समीकरण बनाते दिख रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रजत, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए अपने इस शो भुलाए ना बने में, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर, जैसा कि मैं बताता ही रहता हूँ, हम उपलब्ध हैं। आप देश दुनिया के हर हिस्से हर कोने से हमसे जुड़ने के लिए आज ही इसे डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है हमारा ये ऐप जो है। इस ऐप के जरिए भी दूरियां कम हुई हैं और आगे भी होंगी, ये दुआएं करते हैं। और आपका स्वागत करता हूँ भुलाए ना बने कार्यक्रम में, मैं रजत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आधी रात के 3:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। और आधी रात के 3:06 हुए हैं और अभी आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। तो ऐसे ही गानों को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना 24। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में

0: दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेल लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिंदगी का मतलब ही उतार चढ़ाव है, कभी सावन है तो कभी पतझड़ है। और इन मौसमी जुगलबंदियों के बीच जो हम मुहावरे बनाते हैं उसके बीच अगर कुछ रहता है ना तो वो होता है हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा साहस। साहस के साथ आगे बढ़ते जाइए, चेहरे पर एक चुटीली सी मुस्कान लिए ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ आप चल रहे हैं, आप चलायमान हैं, प्रगतिशील हैं। और साफ सुथरी विचारधारा के साथ आगे बढ़े, एक उन्मुक्त विचार शैली के साथ आगे बढ़े तो सकारात्मकता अपने आप आपका साथ देती रहेगी। यही सिखाते हैं हमारे बहुत सारे फिल्मी गाने और उन्हीं के बीच हम हैं आपके साथ। प्रोग्राम है सारेगामा, मैं हूँ रजत आपके साथ इस प्रोग्राम में। सुबह के 4:13 हुए और कुछ ही पल में यानी अब से 35-40 मिनट की बात और है और इस दिन की पहली सूर्य की किरण इस धरती के आगोश में आएगी और उसका स्वागत करने के लिए हमारे पास तैयार हैं बहुत सारे गाने और हमारे साथ तैयार हैं हमारी बातें आपसे करने के लिए। करना चाहें तो ज़रूर कीजिए 9868107070 9868107070 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि दिन की सकारात्मकता से, दिन की पॉजिटिविटी से असल में आपके मायने क्या है, किस खास तरह की परिभाषा से आप नवाजते हैं। जब आप जिंदगी में कहते हैं ना कि हम चल रहे हैं, हमें चलना है, तो आप इसे किस पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, आपकी सकारात्मकता की परिभाषा क्या है, बताइए मुझे। और सुनते रहिए गाने मेरे साथ यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमें उपलब्ध, आप सुन सकते हैं हमें, वहां भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ देश और दुनिया की बाकी हिस्सों की तरह। मैं आपको बता दूं कि कुछ मैसेजेस हमें मिलते रहे हैं। अफशा खानम जी का मैसेज आया था हमारे पास बिजनौर यूपी से, बिजनौर जिले से हैं, धामपुर के साथ हैं, हमेशा की तरह इस बार भी जुड़े आर एम राजकुमार तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से। धर्मेंद्र भाई हमें मैसेज करते हैं इसराइल से। तो इसी तरह आप भी लोग आते रहें और अपनी कहना चाहिए कि बताएं क्या आप समझते हैं जिंदगी के बारे में और क्या आप और पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो आपको मिला है कितना बहुत है वो आपके लिए बता सकें तो जरूर बताइएगा। प्रोग्राम है सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को

आकाशवाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

रंग हरोर है, उमंग हरोर है, लेकिन कविताएं लिखने की भी बात होती है। देखिए मैं शुरू कर देता हूं लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे अतराफ, हमारे आसपास, जिनमें ये कला कूट कूट कर भरी है। अभी एक मैसेज मिला मुझे कुछ देर पहले, अनिल शर्मा जी हैं हमारे श्रोता मित्र, सरिता विहार दिल्ली से लिख रहे थे। इन्होंने कहा कि रजत मैं सुबह के सैर करते समय अपने विचार लिख रहा हूँ। जब इन्होंने हमें मैसेज किया, इन्होंने कहा कि सकारात्मक ता मेरे बुढ़ापे के समय सुबह दिन की शुरुआत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अनुशासन, शौर्य, आगे बढ़ने की ऊर्जा और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। फिर एक कविता भी लिखी इन्होंने, अपने गमों की नुमाइश मत कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो तेरे पास आएगा हर रोज़, उसे पाने की ख्वाहिश मत कर, तकदीर खुद बदल जाएगी सुना इंसान, मुस्कुराना सीख ले वजह तलाश मत कर। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और इन्होंने कहा कि ये रचना मैंने सुबह 3:30 बजे लिखी। अनिल जी आपको मुबारक, आपकी रचनात्मकता, आपकी सकारात्मकता और आपके विचार किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई तब्दीली अगर ला पाए तो वाकई आपकी कलम क्रांतिकारी बनकर उभरेगी और याद की भी जानी चाहिए। इतनी बढ़िया लाइन है आपने, वो भी इस तरह का मौका तराश कर लिखी। बहरहाल अब आ चुके हैं हम उस पड़ाव पर जब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। 4:55 होने को हैं, कुछ ही देर में हम अगले पड़ाव की तरफ अपने आध्यात्मिक गीतों पर, भजन कीर्तन, भक्ति संगीत पर आधारित अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मुझे लेनी होगी आपसे विदा, लेकिन आप सभी के लिए शुभ संदेश यही है कि आप खुश रहें और जो कर रहे हैं उसे पूरी लगन, पूरे मगन होकर कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नमस्कार, सुप्रभात।